नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। We have extended

0: our solidarity and support to the government and people of Nepal.
1: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे.
0: And recovery efforts in the country.
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है. भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके. वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता. युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है. 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया. यह देश छह देश मतदान से अलग रहे. मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है. एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा. भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल एक मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक और अंक की आवश्यकता है. विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा. इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया.
4: भारती वेव्स ओटीटी प्लेटफर्ममा पनि. त अब कार्यक्रम शुभ प्रभात अन्तर्गत बिहानी सूचनामा हामी खेतीपातीबारे सल्लाह गर्नेछौँ. आज चर्चा गर्ने विषय रहेको छ सयपत्री फुलको खेती. सयपत्री फुलको खेती गर्नु अघि फुलका असल थरीको जोगाड गर्न अति आवश्यक छ. बिजन राख्दा फुलको थुङ्गा ठूलो भएको बिजन छान्नुपर्छ. थरीहरूमा पहेँलो सयपत्री, हल्का पहेँलो र गुजुमजे हुन्छ र रोप्ने समय विशेष गरेर वैशाख महिनामा सयपत्री फुलको बियार राख्नुपर्छ. अनि बियार बनाउँदा एक दुईपल्ट राम्ररी खनेर बियार तयारी गर्नुपर्छ. अनि 4 फुट चौडाइ अनि 6 फुट लम्बाइ भएको हुनुपर्छ बियार. अनि पानी जम्न दिनु हुँदैन. अनि त्यसकारण कुलोको बन्दोबस्त राम्ररी गरेको हुनुपर्छ. बियारमा गाईको पाकेको मल अथवा कम्पोस्ट सार प्रयोग गर्नुपर्छ. अनि बिउ छरेको 1 वा 1.5 महिनापछि बिरुवा तयार हुन्छ. जमिनको तयारी गर्दा बिरुवा तयार हुन अघि नै सयपत्री फुल लगाउने ठाउँको राम्ररी खनजोत गर्न आवश्यक छ. सयपत्री फुलको लागि जमिनको तयारी अरू फुलहरूलाई जस्तो गर्न पर्दैन. खालि रोप्नु अघि खडलमा गोबर मल हामी हालेर त्यसलाई सप्रन्छ. अनि तरै पनि गोबर मलसित एल्ड्रिन 5% अथवा एल्ड्रेक्स 5% धुलो पाउडर मलसित मिसाएर लगाए कमिला, धमिरा अथवा खुम्ले किरा लाग्न पाउँदैन. हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूले सयपत्री फुललाई बारीको डिलडिल वा कान्ला कान्लामा लगाउने पनि गर्छन्. तर यो फुललाई राम्रै बारीमा मल जल लगाएर खेती गरे निश्चय नै दसैँ तिहारमा अरूको घर घरमा गएर माग्ने आवश्यकता पर्दैन. अनि वैशाख महिनामा लगाएको सयपत्री फुल ठिक असोज कार्तिक महिनामा ढकमक्क फुल्छ. अनि सयपत्री फुललाई साजनको जरुरत पर्दैन. तरै पनि साह्रै सेपिलो ठाउँमा भने सयपत्री फुल सप्रदैन. अनि सयपत्री फुलको खेती गर्न सजिलो छ. अनि जस्तो ठाउँमा पनि ढकमक्क फुलिरहेकै हुन्छ. यसकारण यो फुल हाम्रो लागि अत्यन्तै प्यारो पनि छ. र कृषक श्रोताहरू, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ सयपत्री फुलको खेती र अब सुन्नेछौँ नेपाली आधुनिक गीत पेमा लामाको स्वरमा. अनि सङ्गीत रहेको छ

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और

0: निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए

0: कभी भी कहीं भी X पर @AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
2: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
5: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है।

0: पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय साह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: अबको केही क्षणमा कलकत्ता केन्द्रको बंगला समाचारलाई समप्रसारण गरी सुनाउनेछौँ।
1: आकाशवाणी कोलকাতা গীতাঞ্জলি এখন খবর।

0: अब अघिल्लो क्रममा प्रस्तुत छ हिन्दी नाटक शत्रु।
1: शत्रु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है के वी शरत चंद्रन के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक शत्रु।

0: लगता है काफी देर हो गई। यस सिस्टर। क्या सिस्टर, मैंने कहा था कि शाम 6 बजे के बाद किसी को टोकन मत देना। अच्छा ठीक है, भेज दो पेशेंट को। हाँ आओ बैठो। बताओ बताओ मुझे, क्या तकलीफ है तुम्हें?
1: डॉक्टर, काफी वक्त बीत चुका है, मेरी आंखों में नींद नहीं आई।
0: नींद नहीं आई?
1: जी हाँ डॉक्टर।
0: कब से है यह तकलीफ?
1: करीब 6 महीने से।
0: 6 महीने से? और तुम आज आ रहे हो, तुमने किसी को दिखाया नहीं?
1: दिखाया था डॉक्टर, ये रही रिपोर्ट के पेपर।
0: लांस नायक हरिकृष्ण
1: जी,
0: सैनिक अस्पताल। अच्छा तो तुम डॉक्टर अजय शर्मा के पेशेंट थे?
1: जी हाँ।
0: तुम अब भी आर्मी में हो?
1: नहीं डॉक्टर, 3 महीने पहले सेवा मुक्त हुआ हूँ।
0: ये जो दवाइयाँ तुमने ली हैं, इन दवाइयों से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुँचा?
1: बिल्कुल नहीं डॉक्टर।
0: टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो तुम बिल्कुल ठीक हो, और फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है।
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर।
0: ऐसा जरूर है। अच्छा एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ तुमसे।
1: जी पूछिए।
0: आर्मी में रहते हुए क्या तुमने किसी व्यक्ति की हत्या की? मेरा मतलब किसी दुश्मन की?
1: हाँ कई बार, लेकिन
0: लेकिन क्या?
1: जिन लोगों को मैंने मारा वो
0: बोलो बोलो, रुक क्यों गए?
1: वो हमारे दुश्मन थे, ये मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: देखो मुझे लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम्हारे अपने ही जवाब में छिपी है। अच्छा आगे कहो।
1: डॉक्टर मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ जिसकी जिंदगी के कपड़े खून और कीचड़ से ही सने हैं। जहां भी मैं गया हूं मेरा वास्ता युद्ध आतंकी कार्रवाइयों से ही पड़ा है। मेरी राइफल से निकलने वाली गोलियां दुश्मनों के सर पर लगती या उनकी छाती को फाड़ डालती। खून के कतरे चारों ओर बिखरते देखे हैं मैंने, हर तरफ।
0: इसका मतलब काफी खून बहाया है तुमने।
1: हाँ लेकिन उन दिनों खून की गंध मुझे पागल बना देती थी। रात के वक्त मेरी वर्दी से भी ऐसी गंध आती जिसे सूंघकर मैं झूम उठता। लेकिन अब जब से मेरी नींद गायब हुई है मुझे ऐसी ही गंध हर तरफ मिलती है, यहां तक कि मैं अभी भी उसे महसूस कर रहा हूं।
0: मुझे लगता है कि तुम अतीत से उबर नहीं पा रहे हो। तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बात है जिसे तुमने अभी तक किसी से नहीं कहा, किसी से शेयर नहीं किया। Am I right?
1: आप ठीक कहते हैं डॉक्टर, एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।
0: That's it. कहो, कहो क्या घटना है?
1: अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए डॉक्टर। वो एक रात थी, एक डरावनी रात। हमें खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ आतंकवादी जंगल में आराम फरमा रहे हैं। आधी रात का वक्त था, हमारी योजना थी कि इन आतंकवादियों पर

0: और उनसे अचानक हमला बोला जाए।
1: अचानक हमारी सर्च लाइटों के सामने कुछ लोग दिखाई दिए जो पेड़ की ओर में छिपने की कोशिश कर रहे थे। हमने गोलियां चलाई, जवाब में उन्होंने भी गोलियां चलाई। ये लोग आतंकवादी ही थे। हम लोग उनके पीछे भागे। जंगल घना था। मैं जिस रास्ते से आगे जा रहा था वो आगे जाकर बंद हो गया। मैं दिशा भटक गया। मेरे सभी साथी मुझसे दूर थे। मैंने उन्हें पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। फिर लगातार इधर उधर भटकने से मैं काफी थक गया था। ठंड भी बहुत थी। तभी अचानक मुझे किसी के कांपने की आवाज सुनाई दी। वो इस तरह हाँफ रहा था जैसे कोई जंगली जानवर शिकारी के चंगुल से बचकर निकला हो।
0: ए, कौन हो तुम? यहां तुम्हारी पहचान करनी है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। तुमने सुना नहीं, हाथ उठाओ।
2: मेरे पास कोई हथियार नहीं है।
0: अपना बैग नीचे रखो।
2: मैं सच कह रहा हूं, इसमें सचमुच कोई हथियार नहीं है।
0: मैंने कहा अपना बैग नीचे रखो। बगल में खड़े हो जाओ, जल्दी।
2: ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं।
0: हाँ, अब बोलो कौन हो तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा?
2: अभी अभी अभी कुछ समय पहले हम एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। मैं अपना रास्ता भटक गया। जब मैं भाग रहा था मेरे हथियार भी कहीं गिर गए। लेकिन मुझे मारने के पहले एक दरख्वास्त है।
0: बोलो।
2: मुझे पानी पिला दो, बड़ी बड़ी प्यास लगी है।
0: ए, अपने दुश्मन की प्यास बुझाने के लिए मुझे यहां नहीं भेजा गया है।
2: जानता हूं, आत्मसमर्पण करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। क्या एक जंग के कैदी के साथ तुम्हारा यही इंसाफ है?
0: तुम इसे जंग कहते हो? रात के अंधेरे में छिपकर मासूम लोगों की जान लेना और ये नजर में जंग है? हाँ, तुम लोगों ने उन लोगों की जान ली है जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो क्यों मारे जा रहे हैं, और हमसे इंसाफ की उम्मीद करते हो?
2: तुम बताओ इंसाफ कहां है?
0: चुप रहो। अगर तुमने आगे जोर से बोलने की कोशिश की तो अभी गोली मार दूंगा।
2: तब देर किस बात की? चलाओ गोली।
0: बंदूक की ये नोक तुम्हारे माथे को छू रही है। मेरी उंगली ट्रिगर पर है। इसे दबाते ही गोली तुम्हारे माथे को छेद करती हुई निकल जाएगी और धड़ाम से गिर पड़ोगे।
2: मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें इंतजार किस बात का है। मुझे मारते क्यों नहीं?
0: इसके पीछे मेरे अपने कारण हैं।
2: तुमने मुझे अब तक वो नहीं दिया जो मैंने तुमसे मांगा था। थोड़ा पानी।
0: हाँ। दूंगा, पर ये मत समझना कि तुम पर अहम खा रहा हूं। मरने के पहले हर आदमी की अंतिम मुराद पूरी की जाती है। ये लो पानी।
2: तो शुक्रिया। पूरी जिंदगी में मुझे ऐसी प्यास कभी नहीं लगी थी। तुम्हें क्या लगता है अभी क्या बचा होगा?
0: निश्चित रूप से आधी रात बीत चुकी है।
2: अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो क्या मैं इस चट्टान पर सो सकता हूं?
0: नहीं, ये जरूरी नहीं है।
2: ये भी मेरी एक आखिरी मुराद है। देखो, इनकार मत करना।
0: अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ।
2: अपने दुश्मनों के लिए इतनी रियायत काफी कम लोग करते हैं। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। देखो आसमान को, देखो हल्की सर्द रात में ये चांदनी और बिखरे हुए तारे। खैर, जो भी हो, गुड नाइट।

0: उसे गुड नाइट कहकर वो गहरी नींद में सो गया। मैं वहीं बैठा उसकी पहरेदारी करने लगा। सच कहता हूं डॉक्टर, उसके साथ बिताए गए वो लम्हे मुझे काफी राहत दे रहे थे। मैंने सोचा सुबह होने तक इसे जिंदा रखता हूं। कई बार मुझे झपकियां भी आई और शायद नींद भी। जब मैं उठा तो देखता हूं मेरे सामने ही बैठा मुझे देख रहा है।
1: नींद काफी बढ़िया थी।
0: मुझे बस उबासी आ रही थी।
1: उबासी नहीं, तुम खर्राटे ले रहे थे।
0: और कितनी ठंड है।
1: सर्दी अभी और बढ़ेगी। तुम्हें क्या लगता है इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरने में कितना वक्त लग जाएगा। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे।
0: सच सच बताओ क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता।
1: मौत से डर। हमने मौत के फरमान पर उसी दिन दस्तखत कर दिए थे जिस दिन हमने इस काम को हाथ लगाया। फिर मौत से कैसा डर।
0: एक बात पूछूं।
1: क्या
0: तुमने ये रास्ता क्यों चुना।
1: अन्याय, हर जगह अन्याय। जब मैं 14-15 बरस का था मेरे सामने एक बेकसूर इंसान की हत्या कर दी गई। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। कुछ और ऐसे हादसे हुए जिनकी वजह से मैं घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। मेरा घर इसी घाटी में है।
0: तो तुम इसी घाटी के हो।
1: हाँ।
0: अब कैसे इन लोगों के साथ।
1: घर छोड़ने के बाद ही मैं इन लोगों के साथ हो गया।
0: तुम्हारा नाम।
1: अब कोई एक नाम हो तो बताऊं।
0: फिर भी
1: उस्ताद, मेरे साथी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं।
0: तुम्हारे घर में अभी कौन कौन है।
1: मेरी अम्मा, अब्बा का एक हादसे में इंतकाल हो गया।
0: और कोई।
1: कोई नहीं, वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है ना।
0: हाँ, तुम्हें नहीं लगता जो तुम कर रहे हो वो गलत है। कम से कम अपने घर के बारे में सोचते हुए कभी बदलने का नहीं सोचा।
1: हम जैसे लोगों का बदलना नामुमकिन है।
0: जरा सोचो, जब तुम इस रास्ते पर चले थे तब क्या तुमने अपने आप को बदला नहीं था। अभी तुम काफी जवान हो, रास्ता बदल सकते हो।
1: चलो, कम से कम तुम्हारी हमदर्दी तो मेरे साथ है।
0: बिल्कुल नहीं। तो तुम भागना चाहते हो।
1: जब मौत साए की तरह हमारा पीछा कर रही हो तो उससे कोई कैसे भाग सकता है। क्या तुम मुझे मौत से।
0: एक शर्त पर। तुम्हें आत्मसमर्पण करना होगा। मौत की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूं। क्या तुम इन भाड़े के हत्यारों से खुद को बचाना नहीं चाहोगे।
1: सुनो, अजान की आवाज। अब सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं। अब सर्दी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या तुम भी घाटी के ही हो।
0: हाँ, हमारा मुख्यालय घाटी में ही है।
1: घाटी जल्द ही रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगी। इस मौसम में घास भी खूब लंबी हो जाती है ना।
0: हाँ, फूलों से भरी घाटी कितनी खूबसूरत लगती है।
1: हाँ, और इसी खूबसूरती के बीच मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं कॉलेज में था तब ऐसे खूबसूरत नजारों को देखकर नज्म लिखता था। ज्यादातर कुदरत की खूबसूरती से ताल्लुक रखती थी, कुछ मोहब्बत से जुड़ी।

0: अभी भी तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति के पास खूबसूरती और मोहब्बत के जज्बात हैं, जिसे शायद तुम लोग काफी पीछे छोड़ चुके हो। सही कह रहा हूं ना?
1: देखो, उजाला होने लगा है, लगता है

0: तुम्हारा इलाका सामने ही है, तुम्हारे जीवन का सबसे अहम इलाका। देखो ये घाटी तुम्हारे लिए भी काफी अहम है, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे अल्फाज ये बताते हैं कि तुम्हें इस घाटी से मोहब्बत है।
1: नहीं,
0: जब मैं सो रहा था तुम्हारे पास भागने का अच्छा मौका था, यहां तक कि तुम मुझे मार भी सकते थे, तुमने जानबूझकर ये मौके गवा दिए। इसका मतलब तुम बदल सकते हो, तुम बदल रहे हो, मैं सही कह रहा हूं ना?
2: ये सच है, मैंने काफी प्रतिशोध ले लिया है, बहुत खून बहाया है मैंने, बंदूकों के साए में जिंदगी के लम्हों को जिया है, लेकिन इस बार मैंने ये सरहद मासूमों की जान लेने के लिए नहीं पार की।
0: फिर
2: मैं अम्मा की एक झलक पाना चाहता था, चुपके से सिर्फ एक बार। तुम्हें पता है मुझे घर छोड़े कितना वक्त बीत चुका है, मुझे खुद नहीं पता। देखो सुबह ये घाटी कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा मुल्क।
0: नहीं, ये हमारा मुल्क है, हमारी घाटी है, जहां हम दोनों जा सकते हैं। देखो तुम खुद सुपुर्दगी कर दो, मेरे मेजर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा।
3: लांस नायक हरी कृष्ण रिपोर्टिंग सर।
4: हाँ कहो, तुम्हारे साथ ये कौन?
3: ये आत्मसमर्पण है सर, एक साधारण आतंकवादी का।
4: आत्मसमर्पण? क्या इसमें इतना साहस है?
3: ये इसी घाटी का है सर, रास्ता भटक गया था और अपने किए के लिए क्षमा चाहता है।
4: क्षमा? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता।
3: क्या सर?
4: पिछली रात के ऑपरेशन में हमने 6 सैनिकों को खो दिया और उनके एक भी आदमी को हम नहीं पकड़ पाए।
3: ओह,
4: जो भी हो तुमने अच्छा किया जो इसे पकड़ लाए, 6 जाने गई हैं, हम एक की लेंगे। इसे बाहर ले जाकर मार दो, इसे जो भी जानकारी मिले ले लो, फिर खत्म कर दो इसे।
3: सर
4: ये तुम्हारा है, रात की नींद उड़ाकर तुमने इसकी कीमत चुकाई है, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हमें अपनी फौज का नैतिक बल ऊंचा रखना है।
3: सर मैंने इससे वादा किया है कि अगर ये समर्पण करता है तो इसकी जान बख्श दी जाएगी।
4: तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मेरा ऑर्डर है और तुम्हें इसका पालन करना होगा?
3: सर प्लीज।
4: नहीं, ये मेरा ऑर्डर है।
3: यस सर।
2: मैंने कहा था तुम्हें
3: भाई, मैं वादा निभा नहीं पाया।
2: मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं, तुमने अपना काम कर दिया है।
3: मैंने? वो कैसे?
2: तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? जितना जरूरी था तुमने उससे ज्यादा मुझे दिया है। बिना संकोच के तुम अपना काम करो, मैं सिर्फ खुदा को याद करना चाहता हूं। चुपचाप।
4: ए, इतना वक्त क्यों लग रहा है, जल्दी करो। यस सर।
0: दूसरे दिन सभी अखबारों ने इस खबर को अपनी बड़ी खबर बनाया, उस्ताद एक खतरनाक आतंकवादी सीमा पर मारा गया। बिना भावुक हुए इस खबर को मैंने पढ़ा, लेकिन उस दिन से आज तक एक भी रात मैं सो नहीं पाया, मेरी नींद पता नहीं कहां उड़ गई। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता उसका चेहरा सामने आ जाता, एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने अपने सामने गिरते और तड़पते देखा था। बताओ डॉक्टर, क्या मेरी जिंदगी शापित नहीं हो गई है? बोलो डॉक्टर।
2: तुम्हारी कहानी सुनते सुनते इतना वक्त बीत गया, क्या तुम गाड़ी से आए हो?
0: नहीं।
2: यहां ठहरे कहां हो?
0: यही स्टेडियम के पास।
2: बस मिल जाएगी ना, देर तो नहीं हो गई?
0: शायद मिल जाए, वैसे भी इस रूट पर बस कम ही चलती है।
2: चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। आओ। लगता है कुछ ज्यादा ही देर हो गई, बैठो।

0: अभी से बाहर कितना शांत लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। इस वक्त कोई भयानक वारदात हो जाए तो पूरा शहर सांस रोक कर खड़ा हो जाएगा। यहां कई जवान लड़के इसलिए घर छोड़ देते हैं ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सकें। ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए पागलों की तरह ये लगे रहते हैं। ये शहर, यहां के नौजवान अपनी मिट्टी छोड़ चुके हैं और कुछ तो सरहद पार चले गए हैं। ये शहर बिना नौजवानों के ऐसे लगता है जैसे इसकी आत्मा कहीं खो गई है। सुनो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है।
1: मुझे? कैसा काम डॉक्टर?
0: बहुत से जवान लड़के एक पागल ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए घर छोड़ चुके हैं, ये बताया मैंने तुम्हें।
1: हाँ डॉक्टर।
0: उनमें एक मेरा छोटा भाई भी था।
1: ओ।
0: तुमने जिस नौजवान की कहानी सुनाई उसके काफी वाकई मेरे भाई की कहानी से मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: मेरे पास उसकी एक तस्वीर है। एक मिनट। हाँ, ये इसे गौर से देखो, क्या ये वही लड़का है? मुझे लगता है वो कोई और होगा। बस दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो इसे
1: डॉक्टर,
0: तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये वो नहीं हो सकता। इसने 2 बरस पहले घर छोड़ा था, बल्कि मैंने ही इसे घर से निकाल दिया था।
1: क्यों?
0: क्योंकि इसकी संगत जिहादियों से हो गई थी। मैं सोचता था कि एक दिन ये जरूर वापस लौट आएगा जब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। कम से कम एक बार वो अपनी अम्मा को देखने जरूर आएगा, पर वो नहीं आया, कभी नहीं आया।
1: अच्छा,
0: अब तुम बताओ, इस फोटो में जो लड़का है क्या ये वही है जिसे तुमने?
1: नहीं,
0: गौर से देखो, मैं कार को किनारे पर खड़ा करता हूं। एक मिनट, अब देखो, ये फोटो 3-4 बरस पहले खींची गई थी, ज्यादा बदलाव नहीं आया होगा। इसके माथे पर घाव का निशान देखो, देख रहे हो? बताओ क्या ये वही लड़का है, वही लड़का जिसे तुमने?
1: मुझे जरा और तो देखने दीजिए।
0: देखो, वही है क्या ये?
1: नहीं।
0: आज सचमुच बड़े इत्तेफाक का दिन है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी।
1: मैं आपका मतलब नहीं समझा।
0: बड़ा अजीब दिन है आज मैंने अपने भाई के हत्यारे से मुलाकात की, और तुमने जिस लड़के को मारा था उसके बड़े भाई से तुम्हारी मुलाकात हुई। है ना अजीब इत्तेफाक? अब बताओ, वही लड़का है ना ये? मैं तुम्हारे चेहरे को बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ, बताओ वही लड़का है ना ये? नीचे उतरो। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? कार से नीचे उतरो
1: डॉक्टर,
0: वहां झील के किनारे पर पहुंचो।
1: क्या सोच रहे हो डॉक्टर?
0: कुछ नहीं, जल्दी जाओ।
1: मैं जानता हूं आपके भीतर बदले की भावना पनप रही है, आप मुझसे नाराज हैं, आप क्रोध में हैं।
0: हाँ मैं हूं।
1: अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बेशक मारिए, अपनी भड़ास निकालिए डॉक्टर, मुझे मारिए।
0: हाँ, तुम इसी लायक हो। आज भी काली अंधेरी रात है और तुम्हारे पास भी हथियार नहीं है। मेरे पास पिस्टल है जो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने साथ रखता हूं। मैं तुम्हें ठीक उसी तरह गोली मार सकता हूं जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारी थी। मेरी इच्छा तो यह हो रही है कि तुम्हें इसी वक्त कार से कुचल डालूं या इस झील में फेंक दूं।
1: आप जैसा चाहे डॉक्टर, मैंने आपके आगे समर्पण कर दिया है।

0: मैं भी क्यों पैसे क्यों ना मारूं, पर उसके बाद मेरी हालत भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। शायद शायद मैं भी जी ना पाऊं। लेकिन लेकिन तुमने मेरे इकलौते भाई को मारा है, तुम्हें जरूर मरना चाहिए।
1: हाँ डॉक्टर, मैं उन लोगों में हूं जिन्हें जिंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए आपको अवश्य मुझे मारना चाहिए। अगर आपको फिर भी संतोष ना हो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिएगा।
0: नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता। आखिर इससे मुझे क्या मिलेगा? घृणा, बदले की आग। आग ऐसे नहीं बुझती, कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझती। तुमने इतने लोगों की हत्या की, क्या मिला? मेरा भाई जो भाड़े का हत्यारा था, उसे क्या मिला? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
1: डॉक्टर, आप अपने आप पर दुखी ना हो।
0: दोस्त, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं।
1: हाँ जरूर डॉक्टर।
0: तुमने उसके साथ पूरी रात बिताई थी, तुम लोगों के बीच ढेर सारी बातें भी हुई होंगी। तुम्हें याद है कभी कभी उसने अपने बड़े भाई का जिक्र किया हो?
1: उसने अपनी अम्मा के बारे में तो जरूर कुछ कहा था, लेकिन
0: तुम याद करने की कोशिश करो। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, एक बार भी नहीं, कुछ भी। जैसे जैसे क्रूर भाई जिस सबसे छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया, या कुछ और?
1: नहीं डॉक्टर।
0: इसका मतलब मरते समय भी वो अपने बड़े भाई को भूला नहीं, याद रखा उसने। चलो ठीक है, ठीक है दोस्त, अब काफी देर हो गई, चलो चलते हैं। आओ, मैं तुम्हें वहीं उतार देता हूं जहां तुम्हें जाना है। चलो।

शत्रु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप के वी शरत चंद्रन के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद संजीत जायसवाल ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुति सहयोग विजयलक्ष्मी शर्मा और सुधीर राजौरिया का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश आहूजा, अनुराग अरोड़ा, राकेश कुमार शर्मा और किशोर सहजानी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक

0: पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा।
1: हो सकता है एक आध बच्चा शिक्षा में ठीक नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने हर एक को कोई ना कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग।
0: श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके प्रति लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अनजाने में ही इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस समाज में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है। ये भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकुरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से बातचीत की। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहे छौ। एफएम 103.5 मेगाहर्जमा साथै दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज अनि मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर मा। समय अहिले ठीक 11:05 भइरहेछ श्रोता। त यस समयको साथै म उद्घोषिका अनुपमा उपस्थित छु विविध प्रस्तुतिहरूको साथमा। त तमाम श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्र्याउँदै अब शुरू गरिरहेछौँ अजम्बरी गीतहरूको प्रस्तुति। अरुणा लामाको स्वर साथै विविध कलाकारहरूको स्वरमा

0: as Teachers' Day. Thus, his birthday has since been celebrated as Teachers' Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 skooli shikshakon ko Rashtriya Shikshak Puraskar pradan karenge. Is karyakram mein pratyek puraskar vijeta ke dwara kiye gaye अनुकरणीय कार्य को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख रही। ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगमगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगी।
0: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर Education, Sri Jayant Chaudhary, Dr. Sukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Education and the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she is being loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
1: This is a very warm atmosphere. The Bharat's President is

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित है और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार, देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्डी।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR, ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्र को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचरी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल ICT उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री GMSSS में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदेह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉपआउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं AI सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंधारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल्स स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन टेलीफिल्म वॉज प्लेड एट विज्ञान भवन एंड वी कैन सी दैट द Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Union Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanta Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Sri Divyendu Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar.
3: And now the show has come, which was expected by everyone. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
1: दिनेश कुमार पंजाब,
3: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
2: श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
1: सुषमा तमांग सिक्किम।
3: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
2: सुषमा तमांग
1: झारखंड।
2: Munmun Bhattacharya, a teacher from Jharkhand, a really proud moment for these nation builders of India to receive the National Teachers Award 2026.
1: Shantanu Patra, West Bengal.
3: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
1: रवि जयसवाल चंडीगढ़।
3: और अब चंडीगढ़ के रवि जयसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
1: लनुन मोई मिजोरम।
2: फ्रॉम मिजोरम मिस लनुन मावी एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
1: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
2: राष्ट्रपति जी एंड सुनीता यादव जी फ्रॉम छत्तीसगढ़ विल बी रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी।
1: मंजरी वी महाजन हिमाचल प्रदेश।
3: और अब हिमाचल प्रदेश की मंजरी जी महाजन माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार लेने के लिए बड़े उत्साह और गर्व के साथ आगे बढ़ती हुई माननीय राष्ट्रपति
1: जय प्रकाश राव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
3: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के छड़ी के धारे मरते हुए
2: receiving the award. What a proud moment it is indeed for J. Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
1: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
2: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Khushbu Kumari, Bihar.
3: And now, Bihar ki Khushbu Kumari, Honorable

0: राष्ट्रपति से अपना ये सम्मान ग्रहण करते हुए
1: अर्चना शुक्ला मध्य प्रदेश
0: समारोह के पुरस्कार
2: फ्रॉम मध्य प्रदेश मिस अर्चना शुक्ला एंड शी रिसीव्ड दिस अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी फॉर अ वर्क स्पेशली ऑन इनोवेशन
1: रेणु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश
2: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: Bhavani her students. Bhavani Bompelli, Telangana.
2: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
2: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji and now Ms. Suman Goel from Delhi. And she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
0: राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करते हुए शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
2: From Puducherry, Mr. Ganeshan S. is receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Mahadev Hanumant Shinde, Goa.
0: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
1: वांगलेमबाम गोविंद सिंह मणिपुर
2: एंड फ्रॉम द लैंड ऑफ ज्वेल्स मणिपुर इज वांगलेमबाम गोविंद सिंह
1: शिव प्रसाद अरविंद टिंगारे सैनिक स्कूल
2: फ्रॉम सैनिक स्कूल शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे रिसीव्स द नेशनल टीचर्स अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल
1: संगीता यादव सेंट्रल बोर्ड ऑफ Secondary Education.
0: CBSE की संगीता यादव माननीय राष्ट्रपति के आगे उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
1: हैं। मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
0: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
1: कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय
2: And now the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, is being escorted to the dais along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
0: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए महाराष्ट्र के कैच धरो रोड स्थित निवासी माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
3: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया 1000 से

0: ज्यादा है।
1: केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: सुश्री याकूब।

0: मिने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याकू तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए 100 कैलोरी पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अभिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

0: साथी में। श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड्स हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपत्ती स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिच्चू स्थित जीएचएसएस सिच्चू सुप्सा में समुदाय संपर्क, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉप आउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे

0: नम्र विनती करते हैं कि
1: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल
2: गतिविधियों को। राष्ट्रपति नेशनल टीचर्स अवार्ड टू The first awardee in this session is Kavita Narasingh Rao Gitte from Maharashtra. And what a proud moment it is indeed for this
0: Nitin teacher. Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
2: From Gujarat, Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7 DBR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
0: Mohammed
2: also his
0: Mustafa
2: students
0: Kamal
2: participated
0: Ladakh.
2: In ISRO competition.
1: Dusre charan mein, ab Maninay Rashtrapati. बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
2: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख, हु इज अ सोशल साइंस टीचर एंड ही हैज ट्रेन्ड 1000 टीचर्स, ही इज आल्सो अ मास्टर ट्रेनर। एंड नाउ फ्रॉम केरलम, सुनील कुमार केपी, हु इज यूज्ड मलयालम आईसीटी एंड डिजिटल टूल्स। एंड द नेक्स्ट विनर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, याकुन तामे, who
0: Rajesh
2: has worked
0: Kaluri,
2: for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
0: Gabar
2: for
0: Singh
2: education.
0: Bisht, Uttarakhand.
2: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
0: Manisha
2: module.
0: Manisha Khetripal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
2: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetripal, who is also a master trainer of teachers.
0: Palash Chaudhary, West Bengal.
2: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
0: Pushpa Prasad, Bihar.
1: और अब बिहार से पुष्पा प्रसाद अपना पुरस्कार प्राप्त कर ले, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पूरे उत्साह।
0: पटेल पूर्णिमा मोहनलाल, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली।
2: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, पूर्णिमा पटेल रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
0: इफ्तिखार खान, उत्तर प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश से डॉक्टर इफ्तिखार खान अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी।
0: रत्ना कुमारी एस, कर्नाटका।
2: फ्रॉम कर्नाटका, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
0: Mohammed
2: of Ayaz children.
0: Mohammad Ayaz Raina, Jammu and Kashmir.
1: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष।
0: अनिल कौशिक हरियाणा।
2: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा, he has 40 models in his mathematics lab and is now receiving the award from the honorable राष्ट्रपति जी।
0: रंजन देवनाथ त्रिपुरा।
1: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।
0: शालिनी कुशवाहा, उत्तर प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए।
0: थंगराज एम, तमिलनाडु।
2: From Tamil Nadu, Thangaraj M is receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji, and he has worked extensively on enjoyable and relatable education.
0: Vartika Gulati, Rajasthan.
1: Rajasthan se Vartika Gulati, Maraniya Rashtrapati se unhone namaskar kiya, chukkar Maraniya Rashtrapati ne abhivadan swikar kiya, aur ab Maraniya Rashtrapati se wo puraskar grahan kar rahi hai. शिक्षा के क्षेत्र में
0: आर रोनाल्ड मेरू, नागालैंड।
2: फ्रॉम नागालैंड, आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन। हियर ही विल रिसीव द अवार्ड।
0: शैलेंद्र प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश।
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम मध्य प्रदेश, शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award, and he has worked to say that there is no dropout from his school.
0: Vaibhav Basantrao Kulkarni, Navodaya Vidyalaya Samiti.
2: Larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Basantrao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati ji.
0: Rajesh Badaloi, Assam.
1: Assam se Rajesh Badaloi

0: अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में
1: राधा राधे इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
0: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त पुरस्कार प्राप्त कर रही है राधा राकेश।
2: कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति
3: महोदय। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार, the Secretary Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashish Mukherjee, have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now,
4: architecture shiksha ko sustainable design aur real world learning se joda hai. Grameen kshetron se judkar ve vidyarthiyon ko awas, school, avsanrachna ki vastavik chunautiyon ko samajhne ke liye prerit karti hai. Vastu kala shikshan ke liye professor Avlokita Agrawal ko rashtriya shikshak puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण। वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भूविज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भूविज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2000

0: और 26 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशन और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026

0: व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के आईटीआई अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने आईटीआई विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। कोविड 19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के

0: डॉक्टर प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सोमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडीनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और शिक्षा
3: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
4: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल
3: आईआईटी रुड़की की प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही है। इन्होंने
5: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू एंड ही वर्क्स ऑन केमिकल इंजीनियरिंग एंड हैज ट्रेन्ड मेनी स्टूडेंट्स।
4: डॉक्टर विनय चमोला
3: और प्रोफेसर विनय चमोला, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है, BSc प्लानी से।
4: डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी आईआईटी भुवनेश्वर।
5: फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी हु वर्क्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग।
4: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण आईआईटी गांधीनगर।
3: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी।
4: प्रोफेसर सौरभ दत्ता IISER भोपाल।
5: From IISER Bhopal, Professor Saurav Datta receives the award from Honorable Rashtrapati ji.
4: Professor Vikram Vishal, IIT Bombay.
3: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए Professor Vikram Vishal को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
4: Dr. Jaraj Singh Sarvaiya, NFSU Gandhinagar.
5: For his work in forensic sciences, Dr. Jaraj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
4: Professor
3: University Gujarat. Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur. Rasayanik Vigyan Kshetra Professor Shankar Prasad Rath
4: Dr. Manisha Nigam, Himvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
5: Himvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
4: Dr. Amar Mohan Rao
3: Dasande, JNMC Vardha. को दिया जा रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए। उन्होंने कार्य किया है वर्धा महाराष्ट्र से
4: डॉक्टर अरुण बाबू एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश
5: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स डॉक्टर अरुण बाबू ही हैज वर्क्ड especially on pediatric treatment and innovation and has
4: Manipur University
5: published 400 scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri Gans.
4: Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
3: Professor Ashutosh Mohan ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
4: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
5: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations and Communication
3: Sushi Shivani V, Karnataka University, Bangalore se hain, inko Sanskrit Vishwavidyalaya se
4: Professor Rajiv Chaudhary, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur
5: Professor Rajiv Chaudhary receives the award for his work on physical education and his
4: from the Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Bangalore.
3: Civil Engineering ke kshetra mein Dr. Vishwanath HS ko puraskrit kiya ja raha hai, Bangalore, Karnataka se.
4: Dr. Sasikala S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
5: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Sashikala S. receives the award for her work in electronics and electrical engineering.
3: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनन शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है इरोड तमिलनाडु
4: डॉक्टर सांदीपन प्रहलाद नरोटे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर
5: From Maharashtra, Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department received the award from the Honorable President of
4: Dr.
5: India.
4: Dr. Harish A., Government
5: and
4: ICI,
5: skilling and entrepreneurship.
4: Kozhikode, Kerala.
5: Harish A. of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
4: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
5: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT, Himachal Pradesh.
4: By Uddhav Rao Patil Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
5: Receives the award from the Honorable President.
4: Patel Rajesh Bhai, Magan Bhai, Government ITI, Bilimora.
3: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
4: हीरालाल शर्मा Government Industrial Training Institute, Chomu.
5: And he has worked in the field of refrigeration and his special work on troubleshooting for ACs. Archana Rakesh
4: Yadav, Government Industrial Training Institute, Adivasi, Shyambakeshwar, Nasik.
5: And she works on fashion design.
4: Reena Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
5: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
4: Somin Pandit, Toliganj Government ITI.
5: Somin Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
4: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
5: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
4: Sanjay Kumar, Kaushal Vikas aur Ludhiana
3: kshetra mein ye puraskar pradan kiye ja rahe hain mananiya rashtrapati dwara.
4: Jyoti Bala Rathor, NSTIW, Indore.
5: She works on skilling and empowerment of her students from Sri
4: Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool
5: Indore.
4: Room and Training Center, Bhubaneswar.
5: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy and Skill Development and Entrepreneurship and the Secretary Department of Higher Education.
3: और अब समय आ गया

0: में जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा। श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
1: एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग।
2: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है। देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दात विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है

निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों की सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन
उनमें आत्मविश्वास की

0: कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान प्रेरणा नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: के लिए निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: The Honorable President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है. राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है. श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा हैं. उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई, और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन. इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है. इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने. हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार. मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं. नमस्कार.

0: Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its ninth edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5

0: तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकाश से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और

0: आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई

0: विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: स्वागत श्रोता, हामी बोलिरहेछौं आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट। राबको क्रममा यहाँहरूलाई सुनाइरहेछौं लोक अनि आधुनिक गीतहरूको प्रस्तुति।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: पाँच वर्षीय नानीसहित अझ तीन भारतीय नागरिकहरूलाई बचाइएको छ र अब शरणार्थीहरूको कुल सङ्ख्या 179 पुगेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले हिजो नयाँ दिल्लीमा संवाददाताहरूलाई भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षाबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयो। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIRNewsKarsiang अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय प्रवक्ता डाक्टर सुधांशु त्रिवेदीले तेलङ्गानामा एक महिला मन्त्रीलाई हटाइएको घटनालाई अन्यायपूर्ण बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा एक संवाददाता सम्मेलनमा डाक्टर त्रिवेदीले यस मुद्दामाथि काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धी अनि मल्लिकार्जुन खड्गे केही पनि नबोलेकोमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। झारखण्डमा प्रश्नपत्र लिक मामिलाको उल्लेख गर्दै उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए।
0: केन्द्रीय आवासन अनि सहरी कार्य मन्त्री मनोहर लालले आज जल शक्ति मन्त्री सीआर पाटिल अनि अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसित स्वच्छता ही सेवा 2026 को तयारीहरूको समीक्षा गर्न वर्चुअल माध्यमद्वारा अन्तर मन्त्रालय बैठक गर्नुभयो। सोसियल मीडिया पोस्टमा श्री मनोहर लालले भन्नुभयो, अभियानको नवौं संस्करणमा देशले स्वच्छ अनि स्वस्थ भारतप्रति आफ्नो वचनबद्धतालाई अघि बढाइरहेको छ। उहाँले नागरिकहरूसित अभियानमा भाग लिने अनि स्वच्छता ही सेवालाई साँचो जनआन्दोलन बनाउने आग्रह गर्नुभयो। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान आगामी 17 सितम्बरदेखि 2 अक्टोबरसम्म मनाइनेछ। मौसम विभागले आज पूर्वी राजस्थान अनि पश्चिमी मध्य प्रदेशमा मुसलधारे वर्षाको अरेन्ज अलर्ट जारी गरेको छ। आगामी दुई दिनमा उत्तर पूर्वी राज्यहरू बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ, उत्तराखण्ड, सिक्किम, बङ्गाल अनि उत्तर प्रदेशका केही भागहरूमा पनि भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। विभागले अनुमान लगाएको छ कि आज अण्डमान अनि निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटकको भित्री भागहरू, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किममा आँधी तुफानसित तीव्र हावा चल्ने सम्भावना छ। छत्तिसगढ, झारखण्ड, त्रिपुरा, राजस्थान अनि उत्तराखण्डमा पनि आज यस्तै प्रकारको मौसम रहने आशा छ। संयुक्त राष्ट्र महासभाले पारम्परिक विश्व मानचित्रलाई परिवर्तन गर्नका लागि मतदान गरेको छ, जसमा अफ्रिकाको आकारलाई अधिक सठिकतासित दर्शाइएको छ। टोगोद्वारा प्रायोजित अनि अफ्रिकी सङ्घका सदस्यहरूद्वारा समर्थित मानचित्र सुधार प्रस्ताव भारत, फ्रान्स अनि ब्रिटेनसहित 164 देशहरूको समर्थनद्वारा पारित भएको छ। एकमात्र अमेरिकाले यसको विरुद्धमा मतदान गरे, जबकि 6 देशहरूले मतदानमा भाग लिएनन्। यो समाचार युट्युबमा @AIRKarsiang मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले गुणवत्तापूर्ण शिक्षाको माध्यमबाट नै विकसित भारतको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिक्षकहरूसित पाठ्यपुस्तकहरूदेखि अघि बढेर विद्यार्थीहरूको जीवनलाई असल बनाउने अनि उनीहरूको बाल्यकाललाई सुरक्षित राख्न ठूलो भूमिका निभाउने आह्वान गर्नुभएको छ।

0: अवसर प्रसार गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दीमा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत

0: का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। श्री मोदी ने बच्चों में अत्याधुनिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकाश में पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तमिलनाडु के डिंडीगुल से आ रहे इन 8 विद्यार्थियों को ले जा रही एक कार सड़क निर्माण और यातायात डायवर्जन के काम के दौरान एक खड्डे ट्रैक से टकरा गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि घटना से पहले घटनास्थल पर व्यापक सुरक्षा उपाय और चेतावनी संकेत लगाए गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.
4: स्टुडियोहरुको साथ उपस्थित छु म शोभना, साथै प्रशावन सहयोगी निरन। अबको क्रममा प्रस्तुत छ डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनको जन्म जयन्ती साथै शिक्षक दिवसमाथि आधारित एक विशेष कार्यक्रम।

0: स्वतंत्रता संग्राम के वे दिन। स्वतंत्रता का सूर्य उदित होने वाला था और भारत विश्व में अपनी वो ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए प्रस्तुत हो रहा था जिसका स्वप्न महात्मा गांधी, विवेकानंद, महामना मालवीय और अरविंद जैसे महापुरुषों ने देखा था। ऐसे समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की छाव में अपना कर्तव्य पथ निर्धारित करना कितना प्रेरणादायक था।
1: इस रूपक के लेखक को वह दिन नहीं भूलता जब उसने पहली बार डॉक्टर राधाकृष्णन को कक्षा में बोलते हुए सुना था।
2: प्रोफेसर राधाकृष्णन एक कुलपति के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में तो प्रसिद्ध थे ही, हम लोगों के मन पर उनका गहरा असर था, लेकिन वे प्राध्यापक इतने अच्छे थे, कैसे थे इसका अंदाज हम लोगों को नहीं था। एक सुखद संयोग था कि उन्हें प्राध्यापक के रूप में देखने का अवसर भी हमें मिला। मैं उन दिनों बीए कक्षाओं का छात्र था और प्रोफेसर पिशारोटी जो कालिदास के अधिकारी विद्वान थे हम लोगों को मेघदूत पढ़ाया करते थे। एक दिन वे पढ़ाते पढ़ाते एकदम चुप हो गए और उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ। एक जिज्ञासावश, एक रोमांचवश हम लोग उनके पीछे पीछे गए और वे हम लोगों को लेकर आर्ट्स कॉलेज के नीचे वाले बड़े कक्ष में गए, जहां देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि कुल 3 छात्रों को बिठाकर स्वयं प्रोफेसर राधाकृष्णन शंकर वेदांत पर कक्षाएं ले रहे हैं और बिना किसी प्रकार की आवाज़ के पैर दबाए हम लोग पीछे गए और अपनी अपनी जगह खोज कर कक्षा में बैठ गए और फिर तन्मयता से उन्हें सुनने लगे। कुछ देर बाद निगाह पीछे की तो देखा कि हम लोग कुछ ही लोग नहीं थे उस क्लास में, बल्कि पूरी की पूरी कक्षा भरी हुई थी और कुछ लोग पीछे से खड़े भी सुन रहे थे उनको।
1: एक विद्यार्थी का इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन उसके सामने साक्षात उपस्थित हों और उनके माध्यम से गत और आगत दोनों आकर वर्तमान से जुटे और अमरता की एक श्रृंखला बनाते हुए आगे बढ़ जाएं। वस्तुतः उनका पूरा जीवन, उनकी समस्त शिक्षा विवेकानंद के अधूरे काम को पूरा करने के लिए समर्पित थी। उनके समकालीन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सी एन मेनन।
3: मेनी माइटी माइंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिंदू फिलॉसफी।
4: अनेक मेधावी व्यक्तियों ने हिंदू दर्शन को समझने और व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है ताकि पश्चिम के लोग इसे आसानी से समझ सके। उदाहरण के लिए महर्षि अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आदि ने भारतीय विचार को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इन सब में डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम इस दृष्टि से सर्वोपरि कहा जा सकता है कि उन्होंने भारतीय दर्शन को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि संपूर्ण विश्व इसे सहजता से समझ सके। डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा व्याख्यायित विचार सर्वदा स्वतः स्पष्ट रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति की जो व्याख्या की है वो आज भी तुलनीय है।
3: इवन टुडे देयर इज नोबडी एल्स हु कैन कंपेयर विद राधाकृष्णन इन दिस एबिलिटी।
5: श्री राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को मद्रास के तिरुत्तनी ग्राम में हुआ था। बालक राधाकृष्णन की शिक्षा योग्य और धर्मपात्र पिता की छत्र छाया में हुई थी। वहीं उनके भीतर धर्म और जाति के प्रति गहरी आस्था का जन्म हुआ। वे सच्चे अर्थों में एक उदार आस्थाशील अध्यापक के रूप में धीरे धीरे विकसित हुए। उनके अध्यापन की

0: छाप जिन छात्रों पर पड़ी उनमें बिहार के राज्यपाल श्री गोविंद नारायण सिंह भी हैं।
1: उनके जीवन की तीन छापे हम समझते हैं कि उनके विद्यार्थियों के ऊपर विशेष रूप से हुई होंगी। एक उनका शिक्षा प्रेम और विद्यार्थियों से भी वाद विवाद करके उनकी बातों को समझना और समझाना, और दूसरी उनकी छाप जो पड़ी हम लोगों पर वो थी अनुशासन प्रियता की, और एक तीसरी बात ये सोचना कि राधा कृष्णन केवल एक इंटेलेक्चुअल थे, ऐसी बात नहीं। राधा कृष्णन एक राष्ट्रीय व्यक्ति थे और बड़े साहसी व्यक्ति थे।
2: उनके भीतर बचपन के संस्कार इतने दृढ़ थे कि वे वेलोर से एफए करने के पश्चात जब मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने गए तो भी उनके मन में अपनी आस्था के प्रति कोई दुविधा उत्पन्न नहीं हुई।
3: वे किसी विश्वास के अंध समर्थन के लिए नहीं पैदा हुए थे। उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों के साथ साथ न्यू टेस्टामेंट का भी अध्ययन किया था, किंतु ध्रुव तारे पर से उनकी दृष्टि कभी नहीं हटी।
2: ये ध्रुव तारा था वेदांत दर्शन। स्वामी विवेकानंद के अद्भुत साहस और उनकी वाग्मिता ने अपने धर्म के प्रति राधा कृष्णन के अभिमान को जागृत किया।
3: वे गहराई से गहराई में उतरते गए। एमए में ही उन्होंने द एथिक्स ऑफ वेदांत जैसी पुस्तक लिखी जिसकी प्रशंसा उनके दर्शन शास्त्र के अध्यापक ने ही की।
2: सन 1920 में द ट्रेंड ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलॉसफी प्रकाशित की जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ।
3: द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ इसी बीच उन्होंने लिखी जिसमें पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ की रचनाओं के आध्यात्मिक पक्ष पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया।
2: उन्होंने अपने हर महत्वपूर्ण विषय को अलग से प्रभावित किया, और तो और स्वयं लोकमान तिलक ने गीता रहस्य में उनके लेखों से उदाहरण लिए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जब बोलते तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी एक छात्रा श्रीमती लीला शर्मा,
4: इतना सुंदर गीता लेक्चर उस समय हुआ कि हम लोग तो छात्राएं कागज और कलम लिए हुए नोट्स उतार रही थी, मेरे पास अभी भी वो नोट्स रखे हैं। राधा कृष्णन एक घंटा तक इतने ओज के साथ, इतने भाव के साथ, इतनी मार्मिकता के साथ गीता पर बोले कि सच कहती हूँ उस दिन से गीता के प्रति मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा हुई।
2: भारतीय दर्शन पर दो खंडों में प्रकाशित उनका विशाल ग्रंथ पाश्चात्य जगत में भारतीय दर्शन को समझने के लिए कुंजी माना जाता है।
3: एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1911 में ही मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में काम करने लगे। अध्यापक के रूप में उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मद्रास के लेखक और पत्रकार श्री ए रंगनाथन।
5: अध्यापक के रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन की 6 विशेषताएं विशेष रूप से गिनाई जा सकती हैं। वे दर्शन के पहले ऐसे भारतीय अध्यापक थे जिन्होंने पश्चिम को भारतीय दर्शन से प्रभावी ढंग से अवगत कराया। उन्होंने मद्रास, मैसूर, कलकत्ता, वाराणसी, शिकागो, हार्वर्ड तथा ऑक्सफोर्ड जैसे अनेक विद्या केंद्रों में भारतीय दर्शन का प्रेरणादायी अध्यापन किया। गीता, उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या में उन्होंने वैदिक मनीषियों की परंपरा को और आगे बढ़ाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नई शैक्षिक अवधारणाओं को स्थापित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह सिद्ध किया कि दर्शन के सफल अध्यापक के लिए वैज्ञानिक की सूक्ष्म दृष्टि, कलाकार की अंतर प्रेरणा तथा संत का आध्यात्मिक चिंतन कितना आवश्यक है। इतिहास में बिरले ही राधा कृष्णन जैसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने तत्कालीन अभिलाषाओं का इतना सार्थक प्रतिनिधित्व किया हो जिससे राष्ट्रों की पारस्परिक समझ एक नए युग की शुरुआत करने वाली हो।
2: डॉक्टर राधा कृष्णन की विद्वत्ता से प्रभावित होकर मैसूर के दीवान सुप्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने उन्हें मैसूर के महाराज कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित किया। मैसूर में वे 1918 से 1921 तक रहे।
3: उन्हें ज्ञान के सच्चे मोती की तलाश थी। उनके भाषण बहुत गंभीर हुआ करते थे। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम

0: रस मिश्र।
1: उनके वक्तव्य की खास बात होती थी कि ये बिल्कुल नपे तुले शब्दों में, नपे तुले समय में अपनी बात कहते थे। लगता था जैसे कि कोई सुनियोजित निबंध पढ़ रहा हो, कोई शब्द फालतू नहीं, कोई शब्द अविन्यस्त नहीं। और जैसे ही 45 मिनट बीतता था उनका भाषण समाप्त होता था।
2: मैसूर से वे कलकत्ता आए। बंग भंग के अपमान से जला हुआ बंगाल नव जागरण के युग में चल रहा था।
0: डॉक्टर राधाकृष्णन को वहां विचार संचार के नए द्वार खुलते हुए मिले। वहां से वे 1926 में ब्रिटिश शासन के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए।
2: बंगाल की नव शिक्षा क्रांति के जनक सर आशुतोष मुखर्जी के निधन के उपरांत उन्हें सन 1927 में पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स का अध्यक्ष चुना गया। वे अंतर्राष्ट्रीय दर्शन कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए।
0: कलकत्ता से वे आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर हैदराबाद गए। वह विश्वविद्यालय तब तक मात्र परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था। इन्होंने अपने अध्यवसाय से उसे एक संपूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर भीमसेन निर्मल।
3: पहली बार हैदराबाद में तेलुगु लेखकों का सम्मेलन होने वाला था। उसके लिए अध्यक्षीय भाषण देने के लिए राधाकृष्णन जी को बुलाया गया था और उन्होंने उसके लिए स्वीकार कर लिया और वो पधारने वाले थे। स्थानीय साहित्यकारों की एक संस्था विश्व साहित्य थी, उसका मैं सदस्य था। हम लोगों ने उनके स्वागत सम्मान की खूब तैयारियां की। गण्यमान्य लेखकों और विद्वानों के साथ मैं हवाई अड्डे पर गया। उन्होंने बड़े प्रेम से नमस्कार कर एक एक का परिचय पूछा। ये उनकी भलमानसी है कि केवल नमस्कार करके नहीं चले गए, रुक करके उन्होंने सबका परिचय पूछा। सायं 4 बजे उनका भाषण था। गंगा का प्रवाह था साहब उनका भाषण, मधुर गंभीर स्वर। उन्होंने तेलुगु साहित्य के विकास क्रम पर और साहित्य के प्रयोजन पर जो बातें बताई थी वे आज भी मेरे मनोपटल पर अंकित हैं।
0: डॉक्टर राधाकृष्णन के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। आंध्र विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान उनके संपर्क में आने वालों में हैदराबाद की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रजिस्ट्रार श्री वैमूरी अंजनेय शर्मा भी थे।
4: दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की आंध्र शाखा ने इसी हैदराबाद शहर में रजत जयंती उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने इस उत्सव का उद्घाटन किया और उस उद्घाटन भाषण में भारतीय भाषाओं के प्रति और हिंदी के प्रति भी जो उन्होंने आदर भाव दिखाया और उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया वो बहुत ही मनन करने लायक है। जनता के प्रति उनके मन में आदर रहता ही साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के प्रति भी, जो मामूली से मामूली कार्यकर्ता भी उनके पास जाएं, जिस ढंग से उनका वो आदर करते थे और कार्य को जो बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव वो दिखाते थे वो तो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो बार बार जब जब हम उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मिले तो बड़ी बड़ी प्रेरणा लेकर के हम बाहर आए और अपने कार्य के क्षेत्र में उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ सके।
2: महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में एक अद्भुत विद्यानगर की स्थापना की थी, जिसमें देश विदेश से लाकर कितने ही रत्न उन्होंने एकत्रित किए थे। उनके जैसे रत्न पारखी की नज़र से डॉक्टर राधाकृष्णन कब तक बचे रह सकते थे। मालवीय जी द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन को काशी बुलाए जाने की घटना का विवरण देते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी।
5: मालवीय जी की जब अवस्था 70 बरस की हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं रहना चाहता। श्री सर राधाकृष्णन का नाम उन्होंने सुझाया और कोर्ट में उनका नाम गया और

0: करीब करीब ये सब लोगों की राय से स्वीकार हुआ कि राधा कृष्ण साहब को यहाँ का कुलपति बनाया जाए। राधा कृष्णन हृदय से शिक्षक थे, शिक्षकों का वो भला चाहते थे, और हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी के समय में कुछ दिनों तक तो कोई प्रोविडेंट फंड पेंशन के तो सवाल ही नहीं था, प्रोविडेंट फंड की भी कोई प्रथा नहीं थी। बात को राधा कृष्ण के आने के बाद 2 पैसा रुपये में 3% प्रोविडेंट फंड शुरू हुआ, और बाद को उन्होंने उसको 1.25% कर दिया। और जो यहाँ ग्रेड नहीं थी, लोग एक ही ग्रेड में वर्षों जो पड़े रह जाते थे, तो कुछ उन्होंने ग्रेड हैं, कुछ पोस्ट हैं, उन्होंने राधा कृष्ण ने क्रिएट की कि लोगों का मन हिंदू विश्वविद्यालय के काम में लगा रहे।
1: काशी में आने तक वे देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में प्रथम पंक्ति में ससम्मान स्थापित हो चुके थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उनके व्यक्तित्व को नया आयाम दिया और यहाँ वे सन 1948 तक रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में विश्वविद्यालय के छात्र भाग ले रहे थे। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आ रहा था। अंग्रेज शासक विश्वविद्यालय को बंद करने की योजनाएं बना रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी सूझबूझ और दूरदर्शिता से विश्वविद्यालय को अंग्रेजों की चाल से बचाया। उन दिनों का विवरण देते हुए श्री राधे श्याम शर्मा।
2: मेरे विचार से वही उन्हीं की जिसके कारण उस वक्त हिंदू विश्वविद्यालय बच गया, वरना आप वायसराय और गवर्नर के पत्र अगर पढ़ें तो उसमें लिखा था कि अगर ये आंदोलन विद्यार्थियों का बंद नहीं होगा और यूनिवर्सिटी बंद नहीं की जाएगी तो सारे विश्वविद्यालय को हम घायल सैनिकों का अस्पताल बना देंगे।
3: ऐसी विषम परिस्थिति में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया। श्री गोविंद नारायण सिंह।
4: जनवरी 45 की बात, वहाँ हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो विश्वविद्यालय का गेट है जिसे वे गोपुरम टाइप बना हुआ है, उसमें हम लोग झंडा फहराएंगे। हाईलाइट उस समय यूपी के गवर्नर थे, उन्होंने कहा अगर यूनिवर्सिटी गेट पर झंडा फहरा जो फहराने जाएगा उसे हम गोली मारेंगे। उस समय हम ही स्टूडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, हम लोगों ने निर्णय किया कि वहीं फहराएंगे। राधा कृष्णन ने कहा कि यूनिवर्सिटी के भीतर तुम कहीं भी फहराओ, गेट पर न जाओ। हम लोगों ने लंका में जो यूनिवर्सिटी कंपाउंड के बाहर एक बस्ती है वहाँ अपनी मीटिंग की। उस मीटिंग में यही सब बात चल रही थी तब तक पुलिस पहुँची हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन को पता लगा वो 3 गाड़ियां लेकर हमारे ऑफिस पहुंच गए और सबको उन गाड़ियों में भर के ले आए और पहले अपने घर ले गए और कहने लगे ये निर्णय तुम लोगों का गलत है। फिर हम शाम को गए, हमने कहा साहब सब कोई निर्णय करते हैं कि उस पर झंडा फहराना लाजमी है और हम जरूर फहराएंगे। तो उन्होंने कहा पहले एक लिस्ट ले आओ कि अगर तुम फहराने गए गोली मार दिए गए तो कौन कौन लोग तुम्हारे बाद जाएंगे। ये तो नहीं होना चाहिए कि फिर राष्ट्रीय झंडा वहाँ न फहरे। करीब 100-200 विद्यार्थियों की एक लिस्ट बना के राधा कृष्णन के सामने दे दी गई कि इस क्रम से हम लोग झंडा फहराने चलते चले जाएंगे जब तक गोली चलती जाएगी। राधा कृष्णन साहब ने उस दिन बिल्कुल जाग के रात बिताई और हम लोगों से बार बार वही कहते रहे। जब सुबह का समय आया झंडा फहराने का तो उनके मन में जो आया हो उन्होंने कहा था तुम लोग चलो, हमको एक किनारे बुलाया, कहा एक काम करना झंडा फहरा के और नीचे कूद जाना वहीं पर एक दीवार थी उसके बगल में। और इतना कह के वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ मिलिट्री आके फालिन हो चुकी थी गेट के सामने और उन्होंने वहाँ से उनके लेफ्टिनेंट को बुलाया, उससे कुछ बातें करते रहे। क्या बात करते रहे हम लोग नहीं जानते। इतने में समय हुआ, हमने डोरी खींची और झंडा फहरा और झंडा फहरते के साथ वहाँ से लोगों ने कहा फ्लैग हॉस्टेड जो टॉमी खड़े थे, तो उस लेफ्टिनेंट ने वहाँ से बिना सोचे समझे कह दिया शूट और गोली 2-4 फैर चली जो दीवार में लगी। उसके बाद राधा कृष्ण ने दरवाज़ा बंद करा दिया। जब सब लड़के नंबर 1

0: वहां से चले आए काफी दूर, उसके बाद ही लेफ्ट दैट गेट।
1: विद्यार्थियों के साथ डॉक्टर राधाकृष्णन के संबंध सदैव मधुर और आत्मीय रहे। वे खाली समय में और कभी कभी तो समय निकालकर व्यक्तिगत रूप से छात्रों के पास जाते, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते और तत्परता से उनका निदान भी करते। वे जहां भी जाते उनके चतुर्दिक भारतीय गुरु की गरिमा प्रतिभासित होती चलती। उनके शिष्यों में से एक श्री सियाराम मैत्रेय।
2: विद्यार्थियों से संबंध के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार पूज्य मालवीय जी महाराज अकस्मात ही किसी छात्रावास में पहुंच जाते थे और किसी भी कठिनाई के संबंध में बातचीत करते थे, वही परंपरा डॉक्टर राधाकृष्णन ने बराबर रखी। डॉक्टर राधाकृष्णन केवल गुरु ही नहीं, केवल एक शिक्षक ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा आचरण किया कि जिससे ज्ञात होता था कि एक प्राचीन ऋषि, मनीषी और चिंतक हम लोगों के बीच है। सामयिक विषयों पर विद्यार्थियों तक से बातचीत करना उनके लिए बहुत सरल था। समयबद्धता अर्थात पंक्चुअलिटी उनकी विशेषता रही है।
3: काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर राधाकृष्णन दिल्ली गए तथा वहां से सन 1950 में राजदूत के रूप में रूस गए, जहां स्टालिन अपनी संक्रांति बेला में चल रहे थे। द्वितीय महायुद्ध के महान बलिदान के उपरांत विजयी होकर उभरे रूस की ओर सारी दुनिया की आंखें लगी हुई थीं। राधाकृष्णन की जब स्टालिन से भेंट हुई तो उनसे उन्होंने दूसरी ही बात की। उनके शब्द थे, हमारे देश में एक सम्राट हुआ है जो एक भयंकर युद्ध लड़ने के पश्चात भिक्षुक हो गया था। आप भी रक्त पद से होकर सिंहासन तक पहुंचे हैं। कौन जानता है कि आप भी उन्हीं के समान नहीं हो जाएंगे।
4: बाद में स्टालिन ने अपने दुभाषीय पावलोव से कहा था, राधाकृष्णन एक संकीर्ण देशभक्त नहीं है, उनका हृदय पीड़ित मानवता के लिए द्रवित हो उठता है।
1: रूस से लौटने के पश्चात 1952 में ही भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए और 1962 तक इस पद पर बने रहे तथा 1962 में ही पूर्णकालिक राष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव हुआ।
4: एक अध्यापक भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ। बधाई देते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टेंड रसल ने कहा था, आज फिलॉसफी सम्मानित हुई है।
1: डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। परिचय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्षों बाद भी वे सहजता से पहचान लेते थे। बंबई के पत्रकार श्री नारायण वेंकटेश दामले।
5: कई बार राष्ट्रपति के रूप में जब अलग अलग प्रांतों में वो जाया करते थे, मुझसे भेंट मुलाकात का अवसर मुझे मिल जाता था। आखिरी मेरी उनकी भेंट 65 में जब वो यूगोस्लाविया के दौरे पर जा रहे थे तो बम्बई एयरपोर्ट पर हुई थी। उस समय उन्होंने पहले तो कुशल मंगल पूछा, उसके बाद अनेक बातों के साथ ही मैंने यह प्रसंग छेड़ा कि डॉक्टर साहब, जब आप हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय आपको आर्थिक प्रश्न से जूझना था, अब परिस्थिति बदली हुई है जिससे वर्तमान कुलपति परेशान हैं। तो इसका जवाब राधाकृष्णन ने बड़े मज़ेदार ढंग से दिया। उन्होंने कहा, देखो जिंदगी में कभी न कभी हमेशा कोई एक प्रश्न बना ही रहता है जिसका हर व्यक्ति को अच्छी तरह मुकाबला करके और उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है, और यही जिंदगी है।
6: डॉक्टर राधाकृष्णन के स्वर्ण की घंटियों जैसे गूंजते वाक्य कानों में अमृत घोलते हैं।
7: इट्स एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज। व्हाट इज द एंड ऑफ मैन्स लाइफ, व्हाट इज द फुलफिलमेंट व्हिच ही एम्स एट।
8: श्रोता सुनिरहनु भएको छ आकाशवाणी खरसाङ एफएम 103.5 मेगा हर्चमा। अब सुन्नुहोस् बाल बालिकाहरूमाथि आधारित कार्यक्रम क्रस योर कलिङ।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम किसान वाणी।
3: यो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा

0: फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यो कार्यक्रम को प्रायोजक रहेको थियो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: अब समय प्रसार गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको समाचार।

0: मात्रै दिदी सुन केसरी जी आदरणीय दाई ठुलदाई जी प्यार भरा आदाब
1: हजुरलाई पनि आदाब
0: मैं आकाशवाणी खरसाङ केन्द्र से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ आप सभी भाई बहनों जी बेफिक्र होकर कार्यक्रम को प्रसारित किया कीजिए हम जैसे श्रोता हमेशा प्रोग्राम को सुनते रहेंगे खट्टी मीठी बयां करते रहेंगे गत दिनांक 13 सप्ताह के बाद 1 अगस्त को डाकपुतली कार्यक्रम में मेरा भेजा गया पत्रों को शामिल किया सुनने में अच्छा लगा आप दोनों को शुक्रिया दादा वीरेंद्र जी को भी शुक्रिया भने लेख्नु भएको छ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्र में जितने भी कार्यकर्ता उद्घोषिका दीदी जी भाई मोहम्मद शरीफ आरजू और उनके घर परिवार के तरफ से आने वाले पर्व त्योहार रक्षा बंधन पर हार्दिक हार्दिक बधाई सभी बहनों को रक्षा करे भगवान प्यारे दीदी सच्चाई को हमेशा साथ लेकर चलते रहे कभी पीछे मुड़ के मत देखना आगे इंसान पीछे शैतान में ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे सभी दीदियों को किसी तरह की कोई कष्ट ना हो भनेर लेख्नु भएको रहेछ उहाँले
1: यो पत्रको उत्तर अलिकति हामी हिन्दीमा दिउँ आजत रेडियो श्रोता संघ हाम्रो नियमित श्रोता भाइ मोहम्मद शरीफ अर्जुनजी ने लिखाए और शुरू में इन्होंने लिखा कि आकाशवाणी खरसाङ केन्द्र की बिल्कुल नाराज नहीं है ये हम अब सभी भाई बहनों को बेफिक्र होके काम करने का इन्होंने संदेश भेजा है सभी जितने भी कार्यक्रम में शामिल है उन सभी को इन्होंने संदेश भेजा है और इन्होंने एक प्रतिक्रिया लिखा है बीते दिन 13 सप्ताह के बाद 1 अगस्त को डाकपुतली कार्यक्रम में इनका जो पत्र शामिल हुआ कार्यक्रम में इनका पत्र सुन के अपना पत्र जो कार्यक्रम में प्रसारित हुआ था वो सुन के इनको बहुत ही अच्छा लगा और खुश हुआ ये इन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया लिखा है और आकाशवाणी खरसाङ केंद्र के जितने भी सभी कार्यकर्ता उद्घोषक उद्घोषिका दीदी भाई बहन है इन सभी को और घर परिवार की तरफ से आने वाले पर्व त्योहार रक्षाबंधन का ढेर सारी हार्दिक हार्दिक बधाई इन्होंने इस तरह से लिखा है लगता है कि ये पत्र हमें थोड़ी देर से मिला है फिर भी हमने कार्यक्रम में शामिल किया है और देरी से हम भी आपको बधाई देते हैं शुभकामना देते हैं और इसी तरह से प्यारी दीदियों को इन्होंने और संदेश लिखा है कि सच्चाइयों से हमेशा साथ लेकर चलते रहना और कभी पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि आगे इंसान ही पीछे शैतान और इन्होंने दुआ भी किया है कि सारे उद्घोषक उद्घोषिका दीदी बहनों को प्रार्थना है कि किसी को कष्ट ना हो और आगे आने वाले दिन में अच्छी तरह से काम करते रहेगा कार्यक्रम करते रहेगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से सभी को आपका बात पहुंचा देंगे आने वाले दिन में भी पत्र लिखते रहिएगा और हमारे कार्यक्रम भी सुनते रहिएगा र अब भने अर्को श्रोताको पत्र पढौ कसको छ हेरौ
0: र यो अर्को पत्र रहेको छ बंशीधर प्रसाद ज्यूको सिलगढीबाट र वाले लेख्नु भएको छ आदरणीय प्रिय ठुलदाई अनि सुनकेसरी बहिनी सादर सप्रेम अभिवादन एवं नमस्कार
1: नमस्कार
0: हजुरलाई पनि नमस्कार आकाशवाणी खरसाङका सबै प्रिय कर्मचारीहरू प्रति हार्दिक शुभकामना एवं अभिवादन साथै मधुर सम्झना 6 तारिक बिहान 8:30 रंगबिरंगको संसार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तोता चित्रज्यूद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसरको स्वर्ण मन्दिर बारे सुविस्तार जानकारी सुन्न पाए खुसी लाग्यो साधुवाद एवं धन्यवाद म पनि व्यक्तिगत रूपमा एकपल्ट त्यस ठाउँमा दर्शन गर्ने मौका पाएको थिएँ कथा सफलताको रंगबिरंगको संसार शिक्षा ज्योति मनको कुरा डाकपुतली मन पर्दो कार्यक्रमहरू हो मेरो डाकपुतलीमा प्राय पत्रचार गर्ने आदरणीय जन व्यक्ति सुखबीर थापासँग 2 तारिक सुकुनाको उष्मा प्रकाशनद्वारा दिने उर्मिला घिसिङ स्मृति साहित्य सम्मान 2026 समारोहमा भेट्ने सुअवसर पाए साह्रै खुसी लाग्यो मेरो मनोकामना पूरा भयो उहाँ एक साधारण मिलनसार व्यक्ति हुनुहुन्छ यो भेटघाटको श्रेय आकाशवाणी खरसाङलाई नै जान्छ डाकपुतलीको अनौठो प्रसारणको कारणले गर्दा नै धेरै अपरिचित व्यक्तिसँग पनि परिचय भयो धन्यवाद तपाईँहरूलाई यस केन्द्रले एउटा पुल अथवा ब्रिजको पनि काम गर्दोरहेछ सधन्यवाद तपाईँहरूको शुभ चिन्तक बंशीधर प्रसाद र उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर पनि लेखेर पठाउनु भएको छ उहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9679290325
1: बंशीधर प्रसाद ज्यूले हामीलाई सिलगढीबाट कार्यक्रम डाकपुतलीमा पत्र लेखेर पठाउनु भएको छ र पत्रमा यहाँले केही कार्यक्रम बारे प्रतिक्रिया पनि लेखेर पठाउनु भएको छ बितेको दिन 6 तारिक बिहान 8:30 प्रसारण हुने रंगबिरंगको कार्यक्रममा चित्र आलेद्वारा प्रस्तुति दिएको अमृतसरको गोल्डन टेम्पल बारे जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ किनभने यहाँले पनि जीवनमा एकपल्ट त्यस मन्दिरमा गएर भ्रमण गर्ने मौका पाउनु भएको थियो भनेर प्रतिक्रिया

0: से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: अगर कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और

0: फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणादायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉपआउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
1: चुने गए सुयोग्यों और शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्री बाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
1: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य निष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकोची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के

0: बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल व्यापक तबाही मचाई जिससे घर सड़कें पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषिक क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
2: इंडिया टुडे सेल्फ अश्योर्ड, हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं। टेलिंग दी स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्यों को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India-Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropower project tunnels in Nepal hit by flash floods. Meghad and Pinch. Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने के लिए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar.
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा।

0: where the real economic multiplier lies. But again, like I mentioned earlier, Rajesh, European buyers want traceability. So they are increasingly demand provenance, which is really a Web3 and a blockchain application which can be done, ethical sourcing, sustainability and supply chain transparency, which the Indian industry needs to do. Yesterday, I think the Belgian Prime Minister expanded the Antwerp Diamond Breeding Laboratory in Mumbai, signaling greater India-Belgium engagement in the diamond ecosystem.
1: Dilip, thank you for those crisp, actionable insights on how the India-EU FTA can translate into real opportunities for various stakeholders across India. Thank you so very much for being with Akashvani.
0: Thank you, Rajesh.
2: You were listening to our discussion on Unlocking Global Opportunities, India-EU FTA opening new vistas for farmers, MSMEs, startups and entrepreneurs. The participants were Dilip Chinoy, economic analyst, and Rajesh Le, anchor. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. Spotlight. ये आकाशवाणी है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
4: व्यक्ति और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
5: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था, और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था, और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं, और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे, अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है, और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है

जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा, गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं। और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथेय संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथेय बना लिया। और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले, जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी, और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था। लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है, यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है। और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है, जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में मनुहारों में, क्या आंसू में उद्गारों में, आवाहन में अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, तो अब क्या अनुनय और क्या मनुहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार, अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुने पन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार, ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है, लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पल

0: हो में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहां देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वह अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं। जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं, कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ। देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: वो कहती है महादेवी तुम क्या लिखती हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात लिखती हो, सीधी बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी। अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो वो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीत ही का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानो दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुककर दोहरे हो चुके पसीने से तरबतर मेहनतकश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साये में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
3: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
2: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
4: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
5: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, जी। आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
4: जी,
5: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
4: जी,
5: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
4: जी,
5: और हिंदी में गजल की

0: परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है जी। जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदरस मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
1: जी,
0: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
1: जी।
0: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था, लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
1: जी।
0: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया। और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो
1: बिल्कुल
0: शब्द कोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी जी।
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगू।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना, इसका क्या मतलब? तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत की गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय, वो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक सिरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद। ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता
1: वाला भी समझ सकता है,
0: और एक प्रोफेसर भी समझता
1: एक प्रोफेसर भी समझ सकता।
0: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
1: हाँ, मैं किसी पुल
0: सा थर थर थर थर थर। अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो गठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है
1: जी। जी
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनके गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीति

0: व्यक्तिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बस 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में का क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। का से का क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलोडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, known for his exceptional artistry and musical sensitivity. He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned mridangam vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrahma Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Shri Varanasi Kali Prasad Babu apne mridangam lay vinyas ka aarambh chaturashtra jati triput taal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu begins his mridanga lay vinyasam with Chaturashtra Jati Triputa Talam.

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट अ पखावज रिसाइटल बाय श्री विठल कुमार राजपुरा। Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत तिरकत चलत पांक चित वना दिप्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत तिरकत चलत पांक चित वना दिप्या चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृष पान दुराले लचकत थिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखी राधा।

श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया झपताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड झपताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाग अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan.